अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी, सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
7: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाब इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा जुड़ा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलन जी मोबाइल नंबर 2310 41 43 842।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: एक मज़बूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
6: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
10: सुनते रहो GFM 90.4।
11: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
11: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
3: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
11: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
11: 0331-252-5786।
3: जी हा 231-525-786
11: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के सदर मसूद पज़दीशियान सुप्रीम लीडर के खसूसी नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई स्पीकर बाकिर कालीबाफ ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराइकती घरू वजीर इस्कंदर मोमनी से मुलाकातू खिते में वधीक छिकताण के रोकण आबनाह हुरमुज़ खोलण तकरारन जो पुरामन नमूने खात्मे ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं आई एस पी आर मौज मुलाकात दौरान इलाइक़ाई अमुन

जे तकरार ॻाल्हियुनि वसीले हल करण जे तरीक़ेकार ते पिण ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ईरानी क़यादत ॻाल्हियुनि ऐं तकरारनि जे पुरमुन हल लाइ सहूलतकारी करण ते पाकिस्तान जे किरदार जी साराह कई। ISPR मूजिबि फील्ड मार्शल जो ईरान जो दौरो मुकमिल थी वियो आहे। दौरे जो मक़सदु अमरीका ऐं ईरान विच में तकरार जे ख़ात्मे लाइ थींदड़ ॻाल्हियुनि में पहल रंडक खे ख़तम करण समेत खिते में चटाधार अमुन ऐं अदम इस्तेहकाम जे मुस्तक़िल ख़ात्मे लाइ पाकिस्तान जी सफ़ारती कोशिशुनि जो हिसो हो। अमरीका ईरान ते वधीक मुआशी पाबंदियूं मुड़ी छॾियूं। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू करण जो ऐलान। ईरान जे सवन डिजिटल असासन टेक्नोलॉजी हवाबाज़ी शिपिंग जे शोबनि ते पाबंदियूं लॻायूं वयूं। अमरीकी नाणे वारे वज़ीर स्कॉट बेसन जो चयो आहे त ईरानी मुआशी जी हर उहा रग कटणी आहे जेका उन रिजीम खे सहारो ॾेई रही आहे। कंहिं मुल्क ईरान खे सहारो ॾियण जी कोशिश कई त उनखे डॉलर सिस्टम मां ॿाहिरि निकिरणो पवंदो या आलमी अकेलाइप जो शिकार थींदो। जेके मुल्क अमरीका सां गॾु बीठल हूंदा उहे भाईवारी जो फ़ाइदो निज़ाम पाण ई गोॾा फोड़े छॾींदो। अमरीका जे मुआशी हमले जो ऐलान फ़ौजी मुआज़ ते नाकामी जो इतराफ़ आहे। ईरानी आर्मी चीफ चयो आहे त अमरीका खे जंगी मैदान में कामयाबी मिले हा त मुआशी मैदान में शोर न करे हा। जंग में तेरान कामयाब थियो आहे। अबनाह हुर्मुज़ ते ईरान जो मुकमिल कंट्रोल आहे। ईरान चाहे त अमरीका तेल जो हिकु कतरो बि अबनाह हुर्मुज़ मां नथो गुज़ारे सघे। चौबर में बहरान जी पाड़ फलस्तीन जो मसलो आहे। फलस्तीन ऐं इसराइल विच में ॻाल्हियुनि जी बहाली ऐं आज़ाद फलस्तीन रियासत जो क़याम ज़रूरी आहे। चीनी सदर शेख चेंपंग जे उर्दुन जे बादशाह शाह अब्दुल्ला सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल दौरान निज़ार। चीनी परडेही वज़ीर वांगी चयो आहे त विचोबर जी सूरताल नाज़ुक मरहले में दाख़िल थी वई आहे। अमुन जे बहाली लाइ ॻाल्हियुनि तरफ़ वापसी अंटर आहे। चीनी परडेही वज़ीर ऐं कोयती परडेही वज़ीर जी मुलाक़ात दौरान सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ओलियो वैल्यू चीन पॉलिसी जारी करे छॾी। तक़रीब खे ख़िताब कंदे शहबाज़ शरीफ चयो त मुल्क में ज़रिए इंकलाब लाइ हारियुनि जी भरपूर मदद कई वेंदी। 60,000 एकड़नि ते ज़ैतून जो फसुल पोखियो पियो वञे। ज़ैतून जे फसुल खे हथी ॾेई परॾेही नाड़ो बचाए सघजे थो। हुकूमत हारियुनि जी मदद वारो सिलसिलो जारी रखंदी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
9: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
10: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
11: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
12: त
7: पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
11: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन
11: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
11: 0331252576
7: जी हा 2315525786
11: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पर जान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी, सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371-1800-3920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राबितो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: खुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी

0: आहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी आई फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
2: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
3: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252576।
3: जी हाँ 231-25-25-786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: रक से बिस्मिल जल्द आ रहा है। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: मोरे पिया तीस से जुम्मा रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻारायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
4: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125257866।
2: जी हा, 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: हेलो
1: हे नायल, आर यू फ्री? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। कैन यू प्लीज टेक मी देयर?
0: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा
1: हूँ। यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो।
0: सी यू।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तेंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वडी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताईं जितरा भी बार आयन उनन के ये बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लगान लाजमी आए।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर लिसनिंग टू जी रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार सिंध की आवाज। हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो कि जी जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल टिपटा सेट कूल एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं। पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं सिंध की गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM। आपका मेरा साथ रहता है, ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी है, सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक।
1: ये माना के आँखों में आँसू हैं, दिलों में बस।
0: प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:20 जो कि पाकिस्तान का मेरी वक्त है, तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा वो लोग भी इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिसमें भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट लव द नेवर। अपनी गाड़ियों और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफजली खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा।

आगे के प्रोग्राम में बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कैमरे से करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना इंक्लूड करने जा रही हूँ बाय कुक स्टूडियो सीजन 9 निर्मल रॉय एंड जबर अब्बास। सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 3310-41-43-842
5: ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
8: सुनते रहो GFM 90.4
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
10: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
10: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
9: बसि पोइ हाणे खणो

0: फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 03125252786।
1: जी हा, 2315525786।
0: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

ओके जी, गाना प्ले कर रहे हैं और मैंने सर्च करने की कोशिश की है, बट मेरे ख्याल से ये वो टाइटल के हिसाब से अलग है वही सॉन्ग हो. सो हम प्ले करते हैं जी शमन का ये वाला गाना और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और आगे चलते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇ, ਰੱਖ ਦੇ ਹਲੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇ ਜੀ।
1: ओके जी, वेरी नाइस। और इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे?
0: हमारे दोस्त हाफिज सावन साहब और हाफिज साहब सब सबको मेरी तरफ से
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के जाने में जाते हैं और वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
3: जी हा, 2315-2575-786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4। ओके थैंक यू सो मच। और ये गाना किसका
2: है?
0: ओके उसका टाइटल क्या है? ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये गाना हम प्ले करेंगे, साथ साथ हम एक और कॉल भी ले लेंगे 03000113488। ठीक है, मैं स्लोली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी कॉलर ने कहा तो प्लीज स्लोली बताया गया तो मैं बिल्कुल स्लोली बता रही हूँ। 03000113488।

ओके जी, साथ साथ हम चलते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज बाय आतिफ असलम फ्रॉम एल्बम सुबह आईना. और इसको हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये सॉन्ग मैं अपने शो में प्ले करने जा रही हूँ. एंड द सॉन्ग कॉल्ड लेट्स हैव सम फन. तो उसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं. सॉन्ग के साथ एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और न्यूज ब्रेक भी होगा. ठीक है, दोनों के बाद वापस आते हैं. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-32-41-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु। आहे।
8: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
7: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
5: जी हाँ, 3615525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

ओकेजन वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं सुंदर की गुजार है, मुझे कहते हैं आयुष रुखसार. आपका व्यवसाय पूरी पूरी एक बजे तक का होगी और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू और हमारा सेगमेंट बोलो.

छोटे गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गोरे गिनकर गाड़िए। तो ये गाना है गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गुल। और जब आप ये बोलेंगे कि जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बोलेगा वो वन कर जाएगा हमारे इस सेगमेंट को, तो जरूर सांस लेंगे हम आप लोगों की। और साथ साथ हम गाने को चेंज करके एक और गाना भी प्ले कर देंगे। और मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि जो मैं गाना प्ले करूँ वो बहुत अच्छा सा गाना हो, और उसी गाने के साथ जो है ना हम आप लोग की लाइव कॉल्स को एंटरटेन भी करें। और प्ले करते हैं जी फलक शब्बीर, आई गेस फलक शब्बीर FT DJ Shadow। तो सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ साथ कॉल्स लेंगे।

0: ओके जी, वेरी नाइस सॉन्ग. आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं 03-000-11-3488. तो आपने कहना है कि गुलाब ने गीले गमले में गुलाबी गुल गिनकर गाड़ दिए, ठीक है. तो ये बोलेंगे और ये जो बंदा ज्यादा सही सही बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट को. अच्छा, साथ साथ हम कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी चलते हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस मुझे रिसीव होते जा रहे हैं. तो नूर हुसैन तो नहीं, हमने ज्वाइन किया है नूर हुसैन तो नहीं, वो कहते हैं कि सिस अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सिस्टर रुखसार, आपका शो बड़ा जबरदस्त है, थैंक यू सो मच. इसके अलावा जी हम साथ साथ मैसेजेस की तरफ भी चलेंगे. तो हमें मैसेज कर दिया है मिठड़ी रुखसार, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो? इंशाल्लाह ठीक होंगी. हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बड़ा शुक्रिया आपका. अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे और हम इंटरटेन करेंगे कॉल्स को, ठीक है. तो कॉलर मेरे लाइन पे मौजूद है. हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: कबीर को तो पूछिएगा.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे हैं भाई?
1: जी जी बिल्कुल, गाना कुछ रहा है ममता मुनेजर.
0: ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू. अच्छा, मेक श्योर वही लोग कॉल करें जो कि टंग ट्विस्टर बोले और टंग ट्विस्टर कहें, और वही लोग कॉल करें तो उन लोगों की कॉल्स में रिसीव करूंगी हंसी खुशी या खुशी खुशी.

साथ साथ हम एक सॉन्ग भी प्ले करते हैं अच्छा सा, और सॉन्ग के साथ आगे चलते हैं. एंड गाना हमारा ऑलमोस्ट पूरा पूरा खत्म हो चुका है जी. सो हियर कम्स द ब्यूटीफुल सॉन्ग. ये जो सॉन्ग है ये है जी सत्यन खालिद की आवाज में. इसको सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और आगे चलते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप वजीर मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल जी ईरानी क़यादत सां मुलाकातन के नतीजो ॾींदड़ करार ॾेई छॾियो। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में मोहसिन नकवी चयो आहे त ॻाल्हियुनि जो महूर अमेरिका ईरान तकरार ऐं विच ओवर में जारी छिकताण जे ख़ात्मे ते हो। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त जे मुकमिल बहाली लाइ घुर्बल क़दम खणण ते गौर कयो वियो। ईरानी सदर मुलाक़ात दौरान हुकूमती मौक़िफ़ ऐं ख़र्चनि खां आगाह कयो। मुलाक़ात दौरान फैलियल मक़बराई मुस्तक़बिल में वधीक मुस्बत क़दमनि लाइ रस्तो खोलींदी ऐं ख़िते में जटादार अमुन जे क़याम लाइ मददगार साबित थींदी।
2: अमरीका खे ॻाल्हियुनि जे बहाली लाइ पंहिंजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकियुनि ऐं दबाउ सां मसइला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त वॉशिंगटन खे इस्लामाबाद तय ते अमल करणु घुर्जे। अमरीका खे ईरान सां मुसबित अकबराई लाइ रवैयो तब्दील करणो पवंदो।
1: अमेरिका ईरान खिलाफ़ नई मुआशी पाबंदियुनि जो ऐलान करे छॾियो। ईरान सां माली राब्ता रखंदड़ मुल्कनि खे बि निशानो बणाइण जी धमकी। अमेरिकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त अमेरिका ईरान सां समूरा मुआशी राब्ता ख़त्म करे छॾींदो। अमेरिकी दफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त ईरान ते हमला बंद नाहिनि कया, ज़रूरत पवण ते हथियारबंद कार्रवाइयूं कयूं वेंदियूं। आबना हरमुज़ ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे। लंग मां तेल जी रसबेत जारी आहे।
2: अमरीका पासदारनि इनकलाब जे सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते $1 करोड़ ताईं इनाम रखण जो ऐलान। फ़रस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अब्दुल अई अहमद रज़ा ऐं ॿियनि जा नाला शामिल। अमरीका सां जंग दौरान शहीद थियल सईद आकाजानी ऐं मजीद खादमीअ जा नाला बि शामिल। ईरानी उहिदेदारनि ते अमरीकी फ़ौजनि ऐं हंधनि ते हमलनि जो इल्ज़ाम।
1: नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीर खाकान फेकदान सां फोन ते राब्तो। ॿिनि तरफ़नि लाॻापन समेत ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। परडे॒ही खाते मौजूदु ॿिन्ही अॻवाणनि रीजनल फोर जे एंड इजलास बाबति बि ख़्यालनि जी ॾेवठ कई वई। ॿिन्ही अॻवाणनि मौजूदा सूरतहाल ते राब्तनि में रहण ते बि इतफ़ाक़ कयो।
2: सुप्रीम कोर्ट पीटीआई बानीअ जे इलाज बाबति दाख़िल तोहीन अदालत जी तरफ़ां एतिराज़ लॻाए वापसि करे छॾी। तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त ते इल्ज़ाम वाज़े करण जी हिदायत। चेयरमैन बैरिस्टर गौर तस्दीक कंदे चयो आहे त एतिराज़ ख़त्म करे अॼु ई दरख़्वास्त दाख़िल कराई वेंदी। बानी सां मुलाक़ात ज़रूरी आहे।

0: छा अदालत जी आईटी जोड़ने लाए सीधी रीत हुकुम जारी करे सके थी छा अदालत जांच ए रिपोर्ट जमा करण वारे अमल तब्दील या निगरानी करे सके थी सिंध हाई कोर्ट मीरजा केस बाबत लिखत में हुकुम जारी करे छो अदालत हुकुम में चयो आए ता सिंध टर्मिनल इंक्वायरी आर्डिनेंस 1979 तहत गजट नोटिफिकेशन का सवाय मुदाखलत जो केस ठहे तो सिंध हाईकोर्ट एजी सिंध ए डिप्टी अटॉर्नी जनरल समेत धुरीन के मुआवनत लाए नोटिस जारी करे छा
1: जेका बाद जे सुई गैस ऑफिस भरसा हथियारबंद की कार ते फायरिंग नौजवान कतल नामालूम जवाबदार कार में सवार थी हक भाऊ पाड़ेवासी अख्तर अली चांडे के गोलियों कतल कर छो लाश अस्पताल में जरूरी कार्रवाई बदवासन हवाले कयो पुलिस वाकये की जांच कर रहा है।
0: खैरपुर भरसा फोर्म मजामत कतल थियल इंजीनियर फैसल गुलजार भुट्टो के वारसन जो जवाबदार की गिरफ्तारी लाए धरणो मकतूल इंजीनियर के वारिस औरतन ए मर्दन शाह हुसैन बाईपास से धरणो हो मुजाहरीन फैसल गुलजार भुट्टो के कतल कंदड़ जवाबदार गिरफ्तार किया वे।

0: अठहठ मोरी भरसा सीआई पुलिस नवाबशाह पारा अठ जणन के कमंदे फसल में ना कैद कर हथ कड़ी उन्हीं लिकायण जो इंकशाफ कैद कल अठ जणन के कमंद के फसल में कैद कर रखने वा फुटेज केटीए न्यूज हथ कर वरता। पुलिस कैद में मौजूद शहरन मूजिब खेन रात का कमंद फसल में रखो है डोह की खबर ना।
1: झंडो मरी वेझो मैट्रिक के शागिर्द जो गोलियो लगल लाश हथ गोट रजाक मगरो वासी 17 वरन जो मोहम्मद उर्स पुत्र मोहम्मद सुमार मगरो जो लाश मिलो। वारसन जो चवण है तो फुटन के फसल से चौकी रही रहा हुआसी नौजवान इतफाकी गोली लगन सबब फौत थो है। पुलिस मौजूद वधिक जांच कर रहा है।
0: सकरंड वेझो मैट्रिक के शागिर्द पान मथा फायर कर मुबैना तौर आपघात कर छो। गोठ मोहम्मद खान मक्सी में 15 वर जो महराणानी मक्सी जिंदगी जो अंतान हो। वाके जो इतला मिलने बाद रेस्क्यू टीम नौजवान जो लाश ताल के अस्पताल सकरना तो जिते निकर जो वालद चवण आए तो फुट ओचतो पान मथा बंदूक जो फायर कर आपघात कयो है।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उगरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।
5: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु। आहे
10: अवां जे इत्माद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे
9: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राबतो करियो असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
11: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
12: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
13: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
14: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
13: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
14: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
13: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
14: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
13: 03125257 86
14: जी हा 231-25-25-786
13: GAFM रेडियो नेटवर्क
14: सिंध जो आवाज़
15: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
16: सुनते रहो GAFM 90.4

तुम्हारी उम्मीद माजजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजय बदल तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समातन से मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरखड़ी दुआओं के संबंध है, चाहतों की बारिश उल्लासवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे डांग से जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांद से तार तक से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं जल्दी का नमस्ते। हाँ जी जनाब प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हम आपके साथ मौजूद रहेंगे, बहुत ज्यादा बातें होंगी, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे और आप लोगों के साथ करेंगे ढेर सारा फर्क। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम में आपका हमारा साथ जो है वो रहेगा ठीक अब से लेकर पूरे पूरे तीन बजे तक, यानी कि प्रोग्राम में दो घंटे होंगे और इन दो घंटों में हम आप लोगों के साथ करेंगे लातादार सी बातें। और इसी के साथ साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, तो तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं, सो presenting the most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ Sidra Muskan, naam to sunai hoga. To bilkul aapke Sidra ke saath maujood hai janab is pyare se program mein pyare pyare listeners ke saath, aur jitne bhi pyare pyare log hamare saath maujood hai wo tamam the log zara apne haal chaal batate jaiye. So dear listeners, antak ye fahalat unke se hi aapki halat ho, ummeed hai chadidan ke bilkul theek thaak honge, sabkul mood ke saath sabkul program ka intezar kare honge. To aapke jo intezar ki ghadiyan thi wo khatam ho chuki hai, finally aap humne entriyan maari li hai. Aapko pata जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे तीन बजे तक। ओके जी, तो रेडी हो जाइए फन करने के लिए और हमारे साथ एंजॉय करने के लिए। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसे बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुने लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला आली रे आली सदर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्के समाल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो है ना वो आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं और आगे से प्रोग्राम के बाद जब फौरन ही हम वापस आप लोगों के पास मुखातिब होंगे तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी आप सुन रहे चलते का नाम मस्ती प्रोग्राम में आपका हमारा साथ पूरे पूरे तीन बजे तक। आइए एक बहुत ही खूबसूरत सी नात इंजॉय करते हैं, तो साथ रहिए और साथ दीजिए।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल

0: लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301343842।
3: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525786।
1: जी हा 2315525786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिर्फ हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

जी वापस आ चुके हैं दोबारे से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मठियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम हस्ती। आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं। उसी के साथ साथ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है वो जरा दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि उन लोगों को भी पता चल सके जिन लोगों को नहीं मालूम कि आज के प्रोग्राम का सवाल क्या रखा गया है। तो आज के प्रोग्राम का जो सवाल है वो ये है कि आपने मुझे बताना है कि एक इंसान का सबसे पावरफुल वेपन क्या होता है, यानी कि हिकड़े मानू जो सब का पावरफुल हथियार केड़ो आए जो यूज करे पांजी जिंदगी में तो हूँ शायद कामयाब थी सके। तो उन्हें जो दिमाग आए उन्हें जो जबान आए या वरी उन्हें जो सब्र आए। ओके दोस्तों आप इस सवाल का जवाब मुझे बताने वाले हैं और मुझे ज्वाइन करने वाले हैं 888 पर आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल जी शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे गाने भी लिस्ट में हैं जो कि हम जाहिर सी बात है आप लोगों को सुनाएंगे और आप लोगों के साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग जो हमें ज्वाइन करते हैं ना उनको इस चीज का पता होना चाहिए कि भाई जान प्रोग्राम में जब आप मुझे ज्वाइन करें तो टॉपिक को लाजमी फॉलो कर लिया करें, क्योंकि जब लोग आप टॉपिक को फॉलो करते हैं तब यकीन होता है कि भाई जान टॉपिक को फॉलो करने वाले लोग कितने ज्यादा है। वैसे तो बहुत से लोग मैसेज कर देते बस एक छोटा सा मैसेज छोड़ दिया और गाना लिख दिया बस बात ही खत्म हो गई, लेकिन जब आप मैसेज कर ही रहे हैं तो टॉपिक को भी फॉलो कर लिया करें ये अच्छी बात होती है। ओके जी तो बिल्कुल आपके मैसेजेस की जाने आएंगे।

जनाब, तो जी बिल्कुल यहाँ पर मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए एक गाना भी मौजूद है। मैं सोच रही थी कि पहले हम ऐसा करते हैं कि गाना लगा लेते हैं, पहले हम गाना लगा लेते हैं और गाना सुनते सुनते ही आप लोगों के साथ बातें करते रहेंगे, ठीक हो गया। तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गाना लिस्ट में सेट कर दिया है, ये गाना आप दोनों के साथ हम सुनेंगे, आप सब लोगों के साथ सुनेंगे बल्कि दोनों के साथ ही गया। तो गाना एंजॉय कीजिए और मुझे बताएं आपको क्या लगता है एक इंसान का सबसे पावरफुल हथियार क्या होता है, उसका दिमाग, उसकी जबान या फिर उसका

और कुछ ऐसा होता है, कुछ बातें ऐसी होती है जो समझ नहीं आती, और प्यार भी उन्हीं बातों में एक ऐसा, यानी कि जब प्यार हो जाता है तो इंसानों को कुछ भी समझ नहीं आता, तो बिल्कुल वैसे ही प्यार वो बला है जो समझ ही नहीं आए। ओके जी, तो जाना इंजॉय करेंगे, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस की जाने बातें, तो चाचा खालिद हमें सबसे पहले ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, किया हो, खुश आयो? हाँ जी बिल्कुल खुश आया, ताम बताया किया हो, ठीक ठाक आयो? एरम कहती है अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दिलबर दोस्त। हाँ जी, आपको वेलकम कहा जाता है। और दादू खां इमदाद जतोई है, अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई, किफायतुल्लाह जतोई, आप सब मिलकर हमारा प्रोग्राम एंजॉय करेगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको वेलकम कहा जाता है। और महबूब अली हमारे साथ है मोरो सिटी से, कहते हैं लाड़काना की कुंज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, हमेशा खुश रहे सिस्टर सिदरा कुंजा, शायद बबर का गाना तो सुनाना। हाजिर साईं हाजिर, तांजो फरमाइशूं हलाईंदासीं, न हलाईंदासीं त काॾे वेंदासीं। बिल्कुल तव्हांखे प्यारो सोनो शायद बबर जो गानो ॿुधाईंदासीं। उनखां अलावा हमारे साथ ही चाचा खाले दोबारा कहते हैं बेटा सिडो, अॼु बि सॉन्ग जी रिक्वेस्ट आहे, तव्हां गानो लिखियो आहे, ठीकु आहे, इहो गानो हलाए वठूं था तव्हांजे लाइ, ऐं मां ॿुधो आहे तव्हां सभु असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया, टॉपिक खे फॉलो कयो था कोन? कयो बाबा कयो, टॉपिक खे फॉलो कंदा कयो। उनखां अलावा जेके माण्हू असांखे हाणे हाणे जॉइन कंदा वञनि पिया, उन्हनि खे चऊं था भली करे आया, तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे। ऐं सवाल तव्हां खां इहो पुछियो आहे त हिकिड़ी माण्हूअ जो सभ खां पावरफुल हथियार कहिड़ो हूंदो आहे, हिकु इंसान जो, उनजो दिमाग़ हूंदो आहे, उनजी ज़बान हूंदी आहे, या वरी उनजो सबर हूंदो आहे। अक्सर ईंदो आहे कुझु माण्हू जी ज़बान एतिरी त ख़तरनाक हूंदी आहे, माण्हू उन खां थोरो पासो कंदा आहिनि, ऐं पासो इन वजह सां न आहिनि कंदा त हू माण्हू उन खां डिॼंदा आहिनि, बल्कि इन वजह सां कंदा आहिनि छो त कई मतिलब तव्हां ॾिठो हूंदो त कंहिं माण्हू जी ज़बान सां बि खोड़ सारे माण्हुनि जो नुक़सान थींदो आहे, ऐं कुझु माण्हू जो वरी दिमाग़ बि अहिड़ो हूंदो आहे, कुझु माण्हुनि जो दिमाग़ एॾो शातिर हूंदो आहे जो उन जे दिमाग़ ऐं चालाकियुनि जी वजह सां खोड़ सारे माण्हू जूं ज़िंदगियूं ख़राब थी वेंदियूं आहिनि। ऐं हा, सबर वरी उहो हथियार आहे जेको अगरि माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी में एड करे थो त पोइ बाबा ॿेड़ो ई पार आहे। त तव्हां ॿुधायो तव्हांखे छा थो लॻे, हिकु इंसान जो सभ खां पावरफुल हथियार कहिड़ो थी सघे?

वो तो बन ही जाएगी। ये खुश फिल्म है।

मुखर्जी जी कितना प्यारा गाना है, सुन रहे हैं ना? बिल्कुल जी, सुनिए, आप लोगों के लिए लगाया मैंने लिस्ट में। यहाँ पर हमारे साथ हैं जी महबूब अली मोरो सिटी से, कहते हैं सिस्टर इंसान का सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार उसका सब्र होता है। ओके ओके। सुल्तानपुर खां अब्दुल गनी जूनी जो हमारे साथ कहते हैं सलाम सिद्रा मुस्कान, वालेकुम असलाम, कहते हैं शो नाइस है, जवाब सब्र सब्र जिनजो शेर फिर तीर न घुसे तिनजो। सही सही, ॾाढो वीआईपी तव्हांजो मैसेज। उन खां अलावा हीअं जी हमारे साथ चाचा ख़ालिद कहते हैं सब्र और शुक्र ऐसा हथियार है जो इंसान को कभी भी झुकने नहीं देता सिवाय एक अल्लाह पाक है। ये टॉपिक आंसर। ओके नाइस। अच्छा ये हमारे साथ ही दिल रुबा कहती है फ्रॉम नौशेरो फिरोज, हाय आप ही जान कैसी है, नाइस शो माशर मंजूर तो प्ले करना, हाजिर हाजिर सब मेरी फरमाइशों हलायूं था, कोई भी न रह जो। उनका अलावा हमारे साथ हैं जी ये हेलो आप ही कैसी हैं आप, टॉपिक का जवाब है सब्र करो अल्लाह कामयाब कर देता है। सितारा हमारे साथ है, सितारा क्या कहती हैं, आप मेरी फरमाइश पूरी नहीं करती हैं, फरमाइश आपका अहमद बुगल का गाना लगाएंगे जी आज, आप टेंशन क्यों लेते हैं। ओके सितारा को वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है। दादू का फारूक हैदर जतोई हमारे साथ कहते सब्र पर गानो बुधायो मास्टर मंजूर जो। ओके तमाम गानो लिखियो आए, ठीक है, मैं कोशिश कयां थी तव्हांजे पसंद जो गानो हलाईंदासीं, न त मास्टर मंजूर जो कोई भी भलो भलो गानो हलाए छॾींदासीं, ठीक आहे। सो थैंक यू तव्हां सां सगॾु आहे।

ओहो जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय किया। एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि जाहिर सी बात है हम मिलकर एंजॉय करने वाले हैं। ये होने वाला है जी राहत फतेह अली खान साहब की आवाज, बहुत ही प्यारा गाना हम साथ सुनेंगे। और आप अभी ज्वाइन करते जा रहे हैं बिल्कुल जी आपके मैसेजेस, और उनखा अलावा टॉपिक ही तमाम फॉलो कर दो वन पाया। टॉपिक मोहन जमा का पुछो है तो एक इंसान है जो सब खां पावरफुल हथियार कहो थी सके तो उन दिमाग उन जबान या वरी नो सबर पर यह गाल भी बिल्कुल सही दिमाग हों तो उनके खबर पवी सब चीजों की सही है छा गलत है। पर अगर दिमाग न हों वरी उनकी यह भी खबर न होंगी तो जबान के किथे कड़ी तरीके से यूज करो है तो यो भी सही ना है। अगर ये भी ना है तो बस इंसान हर चीज रेट हो सबर करे। हाँ सबर करो हो जिते तो उत करण घुर्जे जिते सबर न करो हो जिते हरगिज न करना कर। क्योंकि कई मतलब आपने इस चीज को भी नोटिस करा होगा कि बहुत से लोग जो कि इस तरह के होते हैं भाई, जो जिन्हें कुछ भी किया जाए, हाँ जी कुछ भी किया जाए, लेकिन वो हर वक्त सिर्फ सबर करते रहते हैं तो फिर उन लोगों को दुनिया जो है ना वो क्या बना देती है और वो क्या बन जाते हैं, ये चीज भी आपने शायद नोट करी होगी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, आपका इस टॉपिक के ऊपर क्या जवाब होगा। और वहाँ पर समान हमारे साथ वेलकम हुआ जी, टॉपिक अकल ओके सही है जी, तो वेलकम कहते हैं आपको भी खुश आमदी। और ऐसे ही सुनते रहिए प्रोग्राम, शामले प्रोग्राम होते जाइए, यहाँ पर ये प्यारे सा गाना एंजॉय कीजिए। गाने के बाद हम जाएंगे जी न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास। सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए, पूरे पूरे 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे क्योंकि हम आपके साथ मौजूद रह रहे हैं। तो यूं जाकर यूं वापस आ जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88.8 FM। आप सुन रहे हैं चलती का नाम।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान के सियासी और फौजी क्यादत से मुलाकात हुआ आप नहर में खोलन है ईरान आमिर जारी कैल बयान में मोहसिन नकवी चाहते गालिन जो मोहर आमिर का ईरान तकरार है विच ओवर में जारी चिकतान के खात्मे थे हो इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मुकम्मल बहाली लाय घुर्बल कदम खण से गौर किया ईरानी सदर मुलाकात दौरान हुकूमती मौकफ ए खदशन का आगाह कर मुलाकात दौरान थियल अहम अखबराई मुस्तबिल में मुस्बत कदम लाय रस्तो खोलिंदी है किते में जटादार अमुन के क्याम लाय मददगार साबित थी।
2: अमेरिका के गाल के बहाली लाय पांजो रवैयो तब्दील करो पव धमकिन तबाह से मसला हल थियण बदरा मुश्किल थी वेंदा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान है वाशिंगटन के इस्लामाबाद में तय थियल मफाहमत अमल करण घुर्जे अमेरिका के ईरान से मुसबत अगराई लाय रवैयो तब्दील करो पव।

0: अमेरिका ईरान खिलाफ नई मुआशी पाबंदी जो ऐलान कर छो। ईरान से माली राबता रखड़ मुल्कन के भी निशानो बनाने की धमकी। अमेरिका नाणे वारे वजीर है अमेरिका ईरान से समूरा मुआशी राबता खत्म कर छी। अमेरिकी दिफा वारे वजीर है ईरान से हमला बंद नहन कया। जरूरत पवण से हथियार बंद कार्रवाई क्यों वी। आबना हरमुज से अमेरिका जो कंट्रोल आए। लंग में तेल की रसबिज जारी है।
1: अमेरिका पासदार इनकलाब के सीनियर अहदेदार की जान डण से एक करोड़ डॉलर तक इनाम जो ऐलान। फहरिस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अली अब्दुल वहीद, अहमद रजाजा ए बया नाला शामिल हैं। अमेरिका से जंग दौरान शहीद थियल सईद अकानी ए मजीद खादमिया नाला भी शामिल। ईरानी अहदेदार अमरीकी फौजन ए हडन से हमलों को इल्जाम।
0: नायब वजीर आजम साबदार जो तुर्किया के परदेही वजीर हाकान फुगदान से फोन से राबतो। बिन तरफा लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गाल परदेही खाते मौजूद बिन्हीं अगवान रीजनल फोरम के ईंदड़ इजलास बाबत भी ख्याल की डेवट कई वही। बिन्हीं अगवान मौजूदा सूरत हाल से राबतन में रहने से भी इतफाक कर।
1: वजीर आजम समेत कैंप खिलाफ बेतमादी रिथ आन अपोजिशन जो हक है। रोके न तो सके वक्त अचण से डिठो वेंदो। कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक है कोरम पूरा कर स्पीकर न पर हुकूमत ए अपोजिशन जिम्मेवारी है। अज इजलास में बेहतरी आई है सुधी कानून साधी बाबत अपोजिशन जो इताद थियण सुठी गाल है। कमेटी जता पीटीआई जो डिनल इस्तीफाओं कबूल नायन क्यों गाल दावत दई थकी पाया हाँ अपोजिशन अगत तो असा भी बदलासी।

0: सुप्रीम कोर्ट पीटीआई वाणिज्य इलाज बाबत दाखिल तोहीन अदालत की दरख्वास्त एतराज लगाए वापस कर छी तोहीन अदालत की दरख्वास्त इल्जाम वाजे करण की हिदायत चेयरमैन बैरिस्टर चयो आहे त एतराज खत्म करे अॼु ई दरख्वास्त दाखिल कराई वेंदी बानीअ सां खानदान जी मुलाकात ज़रूरी आहे
1: छा अदालत जी आई डी जोड़ण लाइ सिधी रीत हुकुम जारी करे सघे थी छा अदालत जांच ऐं रिपोर्ट जमा कराइण वारे अमल तब्दील या निगरानी करे सघे थी सिंध हाई कोर्ट मीर रज़ा केस बाबति लिखित में हुकुमनामो जारी करे छॾियो अदालत हुकुम में चयो आहे त सिंध ट्रिब्यूनल इंक्वायरी आर्डिनेंस 1979 तहत गज़ेट नोटिफिकेशन खां पोइ
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहां वहां जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तीन छो थी डिनी वे तो जो अस बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क आ ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र के पोलियो लगी सके तो कें उम्र के वैक्सीन कर सके तो रेशो 10 साल का घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट आए सभी के बूस्टर डोज लगे
5: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारी की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अवां चाहियूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
8: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरियाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरियाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842
9: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
10: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
9: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
10: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली। छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम

0: रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125252786।
0: जी हा, 2315525786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: अक्सर वालदेन सवाल कंदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: तक घर सिंध का राज दुलारा शहर,
1: जिसे चूमती है दरियाए सिंध की हर लहर।
0: सक्खर के हर अंदाज से बसी आवाज, जीए सक्खर FM 88। सक्खर की आवाज,
1: जीए FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेट पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिर्पुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथिली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम सी। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम में हम आप लोगों के साथ मौजूद है जनाब प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं जो लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने हमें अभी अभी सुना स्टार्ट किया होगा उनको वेलकम करने के साथ साथ ये बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल जो पूछ लिया है तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप हमें मैसेज करें शामिल प्रोग्राम हो जाए तो आप लोग टॉपिक को भी लाजमी फॉलो कर लें। तो आज का जो प्रोग्राम का टॉपिक है वो कुछ इस तरह है कि आप मुझे बता रहे हैं कि एक इंसान का सबसे पावरफुल हथियार कौन सा होता है, उसका दिमाग, उसकी जबान या फिर उसका सब्र। तो अगर आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं तो आप हमें 888-1 पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के अलावा जिनको नहीं मालूम कि हम कैसे पैनल पर मैसेज करेंगे तो ऐसा कीजिए अपना सेल फोन उठाइए मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए टाइप कीजिए LR सिंगल स्पेस दीजिए अपना नाम लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1 पर। ये तरीकेकार हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर सुन सकते हैं यानी कि बहुत से लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद होते हैं फेसबुक पर हमारा शो सुनते हैं। जहां जहां पर हमारा शो नहीं चलता रेडियो के थ्रू तो आप हमें फेसबुक पर इजीली सुन सकते हैं। तो पोस्ट को जो है वो लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि बहुत सारे लोगों को हमारा प्रोग्राम जो है वो पहुंच सके और वो भी हमारा प्रोग्राम सुन सके। ओके जी, इसी के साथ साथ आप लोगों के पसंद के गाने जो हैं वो लिस्ट में सेट होते हैं जो कि आप लोगों की चॉइस के ऊपर होते हैं। कुछ आप लोगों की पसंद होती है कुछ हमारी पसंद होती है, कुल मिलाकर आप लोगों के ये प्रोग्राम पेश किया जाता है। ओके सर, बिल्कुल आपकी पसंद के गाने सुनेंगे।

हाँ वो कहते हैं ना कि अगर एहतराम खत्म हो जाए तो फिर किसी भी रिश्ते के कायम रहने की कोई वजह ही पेश नहीं आती। हर रिश्ते को निभाने के लिए एहतराम बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एहतराम के बगैर मोहब्बत नहीं हो सकती और एहतराम के बगैर दोस्ती हो ही नहीं सकती। हत्ता कि एहतराम के बगैर खून का रिश्ता भी अपनी अहमियत खो देता है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि आपके किसी रिश्ते के अंदर एहतराम खो चुका है, एहतराम कहीं गायब भी हो चुका है, तो यकीन जाने आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत ज्यादा देर नहीं चल सकेगा, क्योंकि एहतराम जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके साथ साथ अगर आप किसी प्यारे से जो है वो मोहब्बत करते हैं, इस हद तक मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत के साथ साथ उस रिश्ते के अंदर एहतराम नहीं पाया जाता, एहतराम मौजूद नहीं, आपको नजर नहीं आता, तो वो रिश्ता आगे जाकर कहीं ना कहीं खत्म तो हो ही जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई एहतराम का होना कितना ज्यादा जरूरी होता है, ये तभी आपको महसूस होगा जब आप इन चीजों को समझने लग जाते हैं। तो एहतराम किया करें, चाहे वो कोई भी आपका खून का रिश्ता हो, कोई दोस्त हो आपका, या फिर आपका चाहने वाला ही क्यों ना हो। और उनका अलावा जेके भी प्यारा मानोस अगर मौजूद आए, बिल्कुल जी, टाइम एतरो तेजी से गुजरन तो वने पर खबर न थी, पर सो टाइम डिठो न थे याद अचीव तो असो गानों भी हलो है गानों जो मैं हलाइंदस वो हों बाबा शाह बबर की आवाज में शाह बबर की गाने की फरमाइश कई असि प्यारे अदे सो ही गानों उन अदे के नाले डेडिकेट क्या ओके गानों बिल्कुल अस इंजॉय क्या तक बुधन भी डींदा तुम चवंदा ना भाजी सिदरा तुम गानों तो हलाया था पर बुधन दियो को सो ही गानों बुध।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हमने यहाँ पर एंजॉय किया। और इसी के साथ साथ गानों की फरमाइशें भाई आप लोगों की मैंने लिस्ट में लगा ली है, क्योंकि आप लोगों की जब चॉइस प्ले नहीं होती तो आप थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, तो आपकी नाराजगियाँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि मनाना तो आता नहीं है हमें। चलें जी, ये सितारा की चॉइस के ऊपर हमने लगाया है अहमद मुगल का गाना, तो सितारा भी बाबा हथनमा बनी भाई गानों सितारा के डेडिकेट आए। अच्छा तमिल जी करें, एंजॉय करें।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबॉरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु। आहे
9: अवां जे इत्माद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे
8: ऑफिस होजे या घर या कारोबार शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर माथिली और जनाब मेहरापुर और साथ साथ लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ जितने भी प्यारे प्यारे लोग मौजूद है सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, तो आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में और जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर मेरे साथ मौजूद है सभी को कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना सुन रहे हैं जो कि सगशा की आवाज में है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल जी आपके मैसेजेस की जानिब आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार में हैं कि हमारे मैसेजेस कब शामिल प्रोग्राम किए जाएंगे। तो बिल्कुल जी अभी किए जाएंगे, तो जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जी अनीस अली चन्ना, चनेसर हुसैन बलोच, गुलन मां खुशबू पर गुलाब न मिलियो, पिरन की चाहियो हकीकत खिताब सो खिताब न मिलियो, ऐं चौथा टॉपिक जवाब हकीकत में हथियार सब खां तेज अखियूं हूंदियूं आहिनि। अखियूं सही सही अवेश चन्ना हमें सुन रहे हैं जी, आपने लास्ट में ये लिख दिया है, सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा हमारे साथ ही हाय बाजी, कैसी हैं आप, आई एम राबिया फ्रॉम हाजन शाह। ओके राबिया हमें सुन रही है हाजन शाह से, राबिया आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है स्वीटी। और जी गुलाम फातिमा हमें सुन रही है, गुलाम फातिमा हमें सखर से सुन रही है, तो प्यारी छोटी गुलाम फातिमा को दिल से वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। रोज आप हमारा शो बड़े शौक से सुनती हैं गुलाम फातिमा, थैंक यू। मेरे को खास अब्दुल्ला महर हमारे साथ, सलाम बाजी, टॉपिक दिमाग और सॉन्ग सुनाओ शाहिद बब्बर का, थैंक यू। शाहिद बब्बर तो गाना गाकर चले भी गए, आपने सुना होगा। और ये हमारे साथ हैप्पी फाइजा, वालेकुम अस्सलाम, सिडो जानी क्या हाल है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और मिस मी आर नॉट, यस आपको बहुत मिस किया कहती है, बट आई मिस यू मोर माई क्यूट आरजे, थैंक यू वेरी मच हैप्पी फाइजा। और कहती है घर से कुछ सामान लेने आई थी तो सोचा आपसे मिलती हुई जाऊँ, वापस गाँव जाऊंगी, हमारे यहाँ तीन शादियां हैं, माता फुल मजे में, आप फुल मजा करो, बाबा फुल मजा करो। इरम कहती हैं दिलबर आप ही जवाब, अच्छा क्या देती हैं जवाब, सबर। और प्लीज प्ले रऊफ मक्सी का गाना, मां कोशिश कयां थी गानो टाइम बची वियो हलाए, तो न त असां 5 बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधंदासीं, ठीकु आहे। अच्छा ये हमारे साथ ही गोठ पाबू वीरो थर पार्कर से दिलीप कुमार मेघवार, नवल राय मेघवार, दानिश कुमार, ओके एतिरो तव्हांजो मैसेज आहे, लॻे थो अॻिते मिसिंग पार्ट थी वियो आहे। वरी ॿियो तव्हां मैसेज कयो, जवाब ॾिनो आहे तव्हां, जवाब वारो मैसेज बि तव्हांजो थोरो मिसिंग पार्ट थी वियो आहे। सो थैंक यू सो मच, तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि बाबा, प्रोग्राम में तव्हां जॉइन कंदा आहियो। चाचा ख़ालिद कहते हैं कि खुश रहने के लिए अपनी ज़िंदगी से ज़हरीले लोगों को निकाल दें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उन खां अलावा बीहर मैसेज किया, चाचा कहते हैं मनाना भी आपको आता है बेटा, सीख जाओगी आहिस्ता आहिस्ता, क्या क्या सीखूंगी मैं। अच्छा ये हमारे साथ हैं बाजी, मुझे एक सॉन्ग तो सुनाएं तेरे बिन ड्रामे का प्लीज, राबिया हमारे साथ है। ओके ओके राबिया, आपकी पसंद का गाना बिल्कुल लिस्ट में है, आप लाजमी इंजॉय करेंगे।

जी सोनो खाना उन्हें सोनन मानन के डेढ़ के जिसके मास्टर मंसूर जी गाने जी फरमाइश करता है अच्छा हमारे साथ दिया परी मौजूद है दिया परी क्या बात है भाई आप हमारे साथ पैनल पर मौजूद कहते हैं कैसी है स्वीटी सफा भली ताम बताए प्यारी किया हो कहते हैं प्लीज प्लीज सॉन्ग राहत दिल के तार राहत त अच्छे गानों गाए भी वो यो गानों जो असा पंज बजे वाले प्रोग्राम में बुधूं था ठीक है डेडिकेट अली मुर्तजा ओके जी हमारी प्यारी दिया परी हमारे साथ मौजूद उन अलावा मौजूद हैं जी हमारे साथ मोहम्मद जमान भाई कहते हैं कि जालिम ने कहा आप हमें सॉन्ग नहीं सुनने देती हम तो आपकी महफिल में आते हैं आपकी मीठी आवाज सुन सके आपके अंदाज को समझ सके ऐसी अच्छी बातें शेयर कर सके बहुत शुक्रिया जी और ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम अदर प्यारी मुस्कान मायरा हमारे साथ है मायरा आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है थैंक यू आप हमारे साथ हैं

ओके जी, कितना खूबसूरत गाना है और साथ ही साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बात है जी। अच्छा, टॉपिक को भी फॉलो करते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्यारे लोग हैं जिनको टॉपिक का पता ही नहीं होगा। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं जरा कि आपको क्या लगता है एक इंसान का सबसे पावरफुल हथियार कौन सा होता है, उसका दिमाग, उसकी जबान या फिर उसका सब्र।

ओके जी, हमारे साथ हैं झुलरी खां खालिक लाशारी के शो नाइस आहे। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। वाह साईं वाह, वाह साईं वाह। और हमारे साथ ही हमारी प्यारी हैप्पी फायजा कहती हैं कि सिडो जानी आप मुझे अच्छी लगती हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कभी रेडियो मत छोड़कर जाना, आपके बगैर जिंदगी अधूरी है। माई क्यूट आरजे लव यू सो मच, लव यू हजार मच। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, आपकी मोहब्बतें हैं जनाब। और उनका अलावा असान से प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक जो वो लिस्ट में लगाए छो आए ही वारो गाना बुदना सी राबिया फरमाइश कई हुई। बाकी जिनकी फरमाइश रहिजी वे थी तो उन्हें का माजरत करी वी, बाकी तो असा पंजी बजे वाले प्रोग्राम में तव जी रेल गाना वो हल्ए वी। ठीक है, का टेंशन ही ना बाबा, दिल जाए कयो, दिल वडी कयो।

अच्छा चाचा खालिद खे हिते ही मुंह कहिड़ो डो कयो तव्हांजो गानो थोरो ईअं हो त उन जी साउंड क्वालिटी थोरी ठीक नहीं न करे मुंह कोन हलायो बाक़ी कोई ॿियो गानो तव्हांजी पसंदि जो ॿुधी वठंदासीं और दिया कहती है सबर टॉपिक अच्छा टॉपिक का जवाब सबर देती है और कहती है नहीं नहीं इशू कोई नहीं है बस ऑफ कर दिए हैं आप ऐसे ही पैनल पर मैसेज किया करें दिया ठीक है जब जब आपको टाइम मिले और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनी बहुत ही अच्छा लगा और इसी के साथ लेते हैं आप लोगों से इजाजत क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ चुका है वरी तहां से इंशाल्लाह मुलाकात थी पई मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में सो बुधन में सारी ना मांजो ओ हिरो सरो ख्याल रखना किथे का गलती थी हुजे तो माजरत कयूं था जिना फीडबैक रही थी वयां सीधा गाना रही थी वयां सबनी का माजरत कयूं था सो मोकलानी ना है बाबू सिन सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: अब आप सुनेंगे GAFM
1: और घरो वजीर मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल जी ईरानी क्यादत से मुलाकातन के नतीजो डींदड़ करार दई छो। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में मोहसिन नकवी है तो गालन जो महूर अमेरिका ईरान तकरार है विच ओभर में जारी चिकटान के खात्मे ते हो। इस्लामाबाद मुफानती याददाश्त के मुकम्मिल बहाली लाय घुर्बल कदम खण ते गौर कयो वयो। ईरानी सदर मुलाकात दौरान हुकूमती मौकिफ ए खदशन का आगाह कयो। मुलाकात दौरान थियल अहम मकबराई मुस्तकबिल में वधीक मुस्बत कदमन लाय रस्तो खोलींदे खिते में जटादार अमुन के कयाम लाय मददगार साबित थींदी।
2: अमेरिका के गालें पांजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकियुनि ऐं दबाउ सां मसला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा। ईरानी सदर मसद पज़ेशान चयो आहे त वाशिंगटन खे इस्लामाबाद में तय थियल मफ़ाद ते अमल करणु घुर्जे। अमरीका खे ईरान सां मुसबत घुबराई लाइ रवैयो तब्दील करणो पवंदो।
1: अमेरिका ईरान खिलाफ नई मुआशी पाबंदियों जो ऐलान कर छो। ईरान से माली राबता रखंदड़ मुल्कन के भी निशानो बनाने की धमकी। अमेरिकी नाणे वारे वजीर है तो अमेरिका ईरान से समूरा मुआशी राबता खत्म कर छो। अमेरिकी दिफा वारे वजीर है तो ईरान से हमला बंद नहन कया। जरूरत पवण से हथियार बंद कार्रवाई क्यों वन्दू। आबना हरमुज से अमेरिका जो कंट्रोल है। लंग मां तेल की रस्म जारी है।

0: वज़ीर आज़म समेत कंहिं बि ख़िलाफ़ बेइत्मादी रिथाराइण अपोज़ीशन जो हक़ आहे, रोके नथो सघजे, वक़्त अचण ते ॾिठो वेंदो। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर आया सादिक चयो आहे त कोरम पूरो करणु स्पीकर न पर हुकूमत ऐं अपोज़ीशन जी ज़िमेवारी आहे। अॼु इजलास में बहितरी आई आहे, सुभाणे वधीक ईंदी। कानून साज़ी बाबति अपोज़ीशन जो एतिहाद थियणु सुठी ॻाल्हि आहे। कमेटियुनि तां पीटीआई जूं ॾिनल इस्तीफ़ाऊं क़बूल नाहिन कयूं, ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई हाणे अपोज़ीशन अॻिते वधंदासीं।
1: क़ौमी असेंबली में सखर हैदराबाद मोटर वे जे फंडिंग न थियण ते पीपीए जे वफ़ाक़ी हुकूमत ते सख़्त तनक़ीद। पीपीए जे मेंबर शर्मिला फारूक 70 अरब रुपियनि जी मनसूबे लाइ रुगो 30 अरब रुपया टोकन रक़म तौर फराहम कया विया आहिनि। हिकु तरफ़ हुकूमत माली गुंजाइश न हुजण जो मौक़ो इख़्तियार करे थी, ॿिए तरफ़ सिंध सां इम्तियाज़ी सलूक कयो पियो वञे। बहावल नगर जे 18.5 किलोमीटर मोटर वे लाइ 19 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। छा इहा सिंध जे आवाम सां नाइंसाफ़ी न आहे?

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशख़बरी खुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अघ मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: दादू सुठो
1: जीए FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस के जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवांजे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371800-3920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।

0: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर मान जो सवाल तो असा के पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तहां के वैक्सीन जे लाए उम्र की हद कोने कें जगह वैक्सीन कें उम्र के पोलियो लगी सके तो कें उम्र के वैक्सीन करे सके पर रेशो वधी क 10 साल के घट आ तंजे करे असा जो रुकेश शायद सभी के बूस्टर डोज लगराए
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मौसम लकवी चयो आहे त गारियुनि जो गौर अमेरिका ईरान तकरार ऐं विच ओवर में जारी छिकताण जे ख़ात्मे ते हो। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश जे मुकमिल बहाली लाइ घुरबनि क़दम खणण ते गौर कयो वियो। ईरानी सदर मुलाक़ात दौरान हुकूमती मौक़िफ़ ऐं ख़र्चनि खां आगाह कयो। मुलाकात दौरान थियल अहम अगभराई मुस्तक़बिल में वधीक मुस्बत क़दमनि लाइ रस्तो खोलींदी ऐं खिते में जटादार अमुन जे क़याम लाइ मददगार साबित थींदी।
2: ईरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जे दौरे खे नतीजो ॾींदड़ करार ॾेई छॾियो। मुलाक़ातुनि जा नतीजा बि जल्द साम्हूं अचण जी दावा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान चयो आहे त अमरीका खे ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ पंहिंजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकियुनि ऐं दबाउ सां मसइला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा। वाशिंगटन खे इस्लामाबाद में तय थियल मफ़ामत

0: अमेरिका ईरान खिलाफ़ नई मुआशी पाबंदियुनि जो ऐलान करे छॾियो। ईरान सां माली राबता रखंदड़ मुल्कनि खे बि निशानो बणाइण जी धमकी। अमेरिकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त अमेरिका ईरान सां समूरा मुआशी राबता ख़त्म करे छॾींदो। अमेरिकी दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त ईरान ते हमला बंदि न आहिनि कया, ज़रूरत पवण ते हथियार बंदि कार्रवाइयूं कयूं वेंदियूं। आबनाह हरमुज़ ते अमेरिका जो कंट्रोल आहे। लंग मां तेल जी रफ़्त जारी आहे।
1: अमेरिका ईरान सां लागापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लगाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजो हक़नि ऐं मफ़ादनि जे तहफ़ लाइ घुर्बल कदम खणंदो। चीन अमेरिका खे ख़बरदार करे छडि॒यो आहे। चीनी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त बीजिंग गैर कानूनी ऐं हिक तरफ़नि पाबंदियुनि खे रद्द करे थो। चीन पंहिंजे मफ़ादनि जे दिफ़ा लाइ ज़रूरी कदम खणंदो।
0: अमेरिका पासदार इंकलाब जो सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते 1 करोड़ डॉलर ताईं इनाम जो ऐलान करे छॾियो। लिस्ट में कमांडर अब्दुल वहीद अब्दुल हई हमीद रज़ा जा नाला शामिल। अमेरिकीअ सां जंग दौरान शहीद थियल सईद आकाजानी ऐं मजीद खादनी जा नाला बि शामिल। ईरानी उहिदेदारनि ते अमेरिकी फ़ौजियुनि ऐं हंधनि ते हमलनि जो इल्ज़ाम।
1: नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो तुर्क जे परडे॒ही वज़ीर सां फोन ते राब्तो। बितरफ़नि लाॻापनि समेत खिते जे सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। परडे॒ही खाते मूजिब ॿिन्ही अॻवाणनि रीजनल फोर जे ईंदड़ इजलास बाबति बि ख़्यालनि जी डे॒-वठि कई। ॿिन्ही अॻवाणनि मूजिब मौजूदा सूरतहाल ते राब्तनि ते रहण बि इतफ़ाक़ कयो।
0: धरती माउ आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी जो समाजी वेबसाइट ते बयान। बिलावल भुटो ज़रदारी सिंधी में लिखियल जुमिलो बेनज़ीर भुटो जी तस्वीरनि सां गॾु शेयर कयो।
1: वज़ीर आज़म समेत कंहिं बि ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ आण अपोज़ीशन जो हक़ आहे। रोके नथो सघे वक़्त अचण ते ॾिठो वेंदो। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर अयाज़ सादिक़ चयो आहे त कोरम पूरो करणु स्पीकर जो न पर हुकूमत ऐं अपोज़ीशन जी ज़िमेवारी आहे। अॼु इजलास में बहितरी आई आहे, सुभाणे वधीक ईंदी। कानून साज़ीअ बाबति अपोज़ीशन जो इतिहादु थियण सुठी ॻाल्हि आहे। कमेटीअ तां पीटीआई जो ॾिनल इस्तीफ़ाऊं क़बूल न आहिनि कयूं। ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई थकिजी पिया आहियूं। हाणे अपोज़ीशन खे अॻिते वधणो पवंदो।
2: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत, कलाक OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3343-842।
5: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0

0: 3125256।
1: जी हाँ, बुड़ी 381 55 786।
0: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानू सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
6: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़न जे सूर, पुठन जी तकलीफ़, कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न, पुठन, कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं ईरान जे सियासी ऐं फौजी क़यादत सां मुलाक़ातूं, आबनाए हुरमस खोलण ऐं ईरान अमरीका तकरार जे ख़ात्मे ते ग़ौर वीचार। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी फील्ड मार्शल जी ईरानी क़यादत सां मुलाक़ातनि खे नतीजो ॾींदड़ करार ॾेई छॾियो। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में मोहसिन नक़वी चयो त ॻाल्हियुनि जो महिवर अमरीका ईरान तकरार ऐं विच ओभर में जारी छिकताण जे ख़ात्मे ते हो। इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे जी मुकमल बहालीअ लाइ घुर्बल क़दम खणण ते ग़ौर कयो वियो। ईरानी सदर मुलाक़ात दौरान हुकूमती मौक़िफ़ ऐं ख़दशनि खां आगाह कयो। मुलाक़ात दौरान थियल अहम अगभराई मुस्तक़बिल में वधीक मुस्बत क़दमनि लाइ रस्तो खोलींदी ऐं ख़िते में जटादार अमुन जी क़याम लाइ मददगार साबित थींदी। ईरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जे दौरे खे नतीजो ॾींदड़ करार ॾेई छॾियो। मुलाक़ातनि जा नतीजा बि जल्द साम्हूं अचण जी दावा। ईरानी सदर मसूद पशक्यान चयो आहे त अमरीका खे ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ पंहिंजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकियुनि ऐं दबाउ सां मसला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा। वॉशिंगटन खे इस्लामाबाद में तय थियल मफ़ामत ते अमल करणु घुर्जे। अमरीका खे ईरान सां मुस्बत अगभराईअ लाइ रवैयो तब्दील करणो पवंदो। अमरीका ईरान ख़िलाफ़ नयनि मुआशी पाबंदियुनि जो ऐलान करे छॾियो। ईरान सां माली राब्ता रखंदड़ मुल्कनि खे बि निशानो बणाइण जी धमकी। अमरीकी नाणे वारे वज़ीर स्कॉट बेसेंट चयो आहे त अमरीका ईरान सां समूरा मुआशी राब्ता ख़तम करे छॾींदो। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेगसेथ चयो त ईरान ते हमला बंदि नाहिनि कया, ज़रूरत पवण ते हथियारबंदि कार्रवायूं कयूं वेंदियूं। आबनाए हुरमस ते बि अमरीका जो कंट्रोल आहे। लंघ मां तेल जी रसद बि जारी आहे। अमरीका ईरान सां लाॻापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लॻाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजनि हक़नि ऐं मफ़ादनि जी तहफ़ुज़ लाइ घुर्बल क़दम खणंदो। चीन अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। चीनी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त बीजिंग गैर क़ानूनी ऐं हिक तरफ़ियुनि पाबंदियुनि खे रद्द करे थो। चीन पंहिंजनि मफ़ादनि जी दिफ़ा लाइ ज़रूरी क़दम खणंदो। अमरीका पास्तारान इनकलाब जे सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते $1 करोड़ ताईं इनाम जो ऐलान करे छॾियो। फहिरिस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अली अब्दुल हई, हमीद रज़ा जा नाला शामिल। अमरीका सां जंग दौरान शहीद थियल सईद आखाजानी ऐं मजीद खादमीअ जा नाला बि शामिल। अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर जी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात। खिते जी मजमूई सूरतहाल समेत ॿियनि मामलनि ते ॻाल्हियूं। ॿेतरफ़नि लाॻापनि सहकार खे बि हथी ॾियण ते ग़ौर वीचार कयो वियो। अमरीकी सफ़ीर खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ फील्ड मार्शल जी मुस्बत किरदार जी वाखाण कई।

धरती माओ आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारीअ जो समाजी वेबसाइट ते बयान। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंधीअ में लिखियल जुमिलो बेनज़ीर भुट्टो जी तस्वीर सां गॾु शेयर कयो।

पीटीआई बानीअ जी इलाज बाबति तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त ते एतराज़ ख़तम थियण बाद सुप्रीम कोर्ट नंबर अलाट करे छॾियो। उज़्मा ख़ान पारां तोहीन अदालत वारी दरख़्वास्त जल्द ॿुधणीअ लाइ मुक़ररु करण बाबति बि दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। दरख़्वास्त हलंदड़ हफ़्ते ई ॿुधणीअ लाइ मुक़ररु करण जी इस्तदा। सेनेट में पीटीआई बानीअ जी इलाज बाबति अपोजिशन जो सख़्त एहतजाज। मेंबर सीटन ते बीही रहिया। बानीअ खे इलाज लाइ इस्पताल मुंतकिल करण जो मुतालबो। सिहत वारे वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त डॉक्टरनि पीटीआई बानीअ जो सीटी स्कैन कराइण लाइ चयो ई न आहे त कीअं थींदो। पिम्स इस्पताल में हिकु न पर ॿ मशीनूं ऑपरेशनल आहिनि, सबूत पेश करे सघूं था। राणा सनावला चयो त हाणे अवां पीटीआई बानीअ खे बीमार साबित करण ते छो ज़िद करे रहिया आहियो। अदालत न बणिजो, असां पंहिंजो उज़र अदालत में पेश कंदासीं। फैसलो अदालत खे ई करणो आहे। अलामा राजा नासिर अब्बास चयो त हिन मामले में हुकूमत वॾी दिल जो मुज़ाहिरो न कयो। यकीन था ॾियारायूं त हुकूमत किराइण जो सबबु न बणजंदासीं।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि थे में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 03125257 86
5: जी हाँ 2315525786
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: छा तव्हां जोड़न जे सूर, पुठन जी तकलीफ़, कुल्हन जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो खात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़न, पुठन, कुल्हन ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। खात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। खात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-33-842।
7: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु। आहे।
8: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
7: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
9: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जीएचक्यू हमले के समय अहम अगबराई, 47 इश्तियारी जवाबदारन जो ट्रायल मुकम्मल, फैसलो जारी। पिंडीअ जी दहशतगर्दी ट्रोल अदालत समूरन 47 इश्तियारी जवाबदारन के 10-10 साल कैद की सजा बुधाए छी। प्रोसिक्यूशन पारा 19 शाहिदन जा बयान रिकॉर्ड कया व्या। इश्तिहारी जवाबदारन जो धारधार ट्रायल थियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जूं ईरान जे सियासी ए फौजी क्यादत सां मुलाकातूं। अबनाए हुरमत खोलण ए ईरान अमरीका तकरार जे खात्मे ते गौर वीचार। घरू वजीर मोहसन नकवी फील्ड मार्शल जी ईरानी क्यादत सां मुलाकातन के नतीजो ॾींदड़ करार ॾेई छॾियो। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में मोहसन नकवी चयो त ॻाल्हियुनि जो महवर अमरीका ईरान तकरार ऐं विच ओभर में जारी छिकताण जे खात्मे ते हो। इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे जी मुकमल बहाली लाइ घुर्बल क़दम खणण ते गौर कयो वियो। ईरानी सदर मुलाक़ात दौरान हुकूमती मौक़िफ़ ऐं ख़दशनि खां आगाह कयो। मुलाक़ात दौरान थियल अहम अगभराई मुस्तक़बिल में वधीक मुस्बत क़दमनि लाइ रस्तो खोलींदी ऐं ख़िते में जटादार अमन जी क़याम लाइ मददगार साबित थींदी। ईरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जे दौरे के नतीजो ॾींदड़ करार ॾेई छॾियो। मुलाक़ातनि जा नतीजा बि जल्द साम्हूं अचण जी दावा। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त अमरीका खे ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ पंहिंजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकियुनि ऐं दबाउ सां मसला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा। वॉशिंगटन खे इस्लामाबाद में तय थियल मफ़ाहमत ते अमल करणु घुर्जे। अमरीका खे ईरान सां मुस्बत अगभराई लाइ रवैयो तब्दील करणो पवंदो। अमरीका ईरान ख़िलाफ़ नयनि मुआशी पाबंदियुनि जो ऐलान करे छॾियो। ईरान सां माली राब्ता रखंदड़ मुल्कनि खे बि निशानो बणाइण जी धमकी। अमरीकी नाणे वारे वज़ीर चयो आहे त अमरीका ईरान सां समूरा मुआशी राब्ता ख़तम करे छॾींदो। अमरीकी दिफ़ा वारे वज़ीर पेट हेगसेत चयो त ईरान ते हमला बंदि नाहिनि कया, ज़रूरत पवण ते हथियार बंदि कार्रवायूं कयूं वेंदियूं। आबनाए हुरमस ते अमरीका जो कंट्रोल आहे। लंघ मां तेल जी रसद बि जारी आहे। अमरीका ईरान सां लाॻापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लॻाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजनि हक़नि ऐं मफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ घुर्बल क़दम खणंदो। चीन अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। चीनी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त बीजिंग गैर क़ानूनी ऐं हिक तरफ़ियन पाबंदियुनि खे रद्द करे थो। कतर बि ईरान ते अमरीकी मुआशी पाबंदियुनि खे हिक तरफ़ो करार ॾेई छॾियो। कतरी परॾेही तर्जुमान चयो त कतर तकरार जे हल लाइ सफ़ारती कोशिशुनि जी हिमायत कंदो रहंदो। अमरीका पासदारान इनकलाब जे सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते $1 करोड़ ताईं इनाम जो ऐलान करे छॾियो। फहिरिस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अली अब्दुल हई, हमीद रज़ा जा नाला शामिल। अमरीका सां जंग दौरान शहीद थियल सईद आखाजानी ऐं मजीद खादमीअ जा नाला बि शामिल। ईरानी उहिदेदारनि ते अमरीकी फ़ौजियुनि ऐं हंधनि ते हमलनि जो इल्ज़ाम आहे।

अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर जी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाकात, खिते जी मजमूई सूरत हाल ते ॻाल्हियूं, बेतरफ़न लाॻापन सहकार खे हथी ॾियण ते गौर वीचार कयो वियो। अमरीकी सफ़ीर खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी मुस्बत किरदार जी वाखाण कई। धरती माउ आहे, पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जो समाजी वेबसाइट ते बयान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंधीअ में लिखियल जुमिलो बेनज़ीर भुट्टो जी तस्वीर सां गॾु शेयर कयो।

0: आपके खिलाफ भी कोई अदमियत मान लाई जा सकती है अपोजिशन की तरफ से?
1: देखिए, ये हक होता है अपोजिशन का कि वो अदम एतमाद लाएं स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ये उनका एक सियासी जमहूरी हक है। तो अगर वो लाना चाहेंगे तो फैसिलिटेट हम करेंगे, हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप नहीं ला सकते, मैं नहीं लाने दूंगा, ये उनका हक है। तो वो जब आएगा वक्त तो तब देखेंगे।
2: बेतमादी रिथ आणण अपोजिशन जो हक है, रोके नथो सकजे, वक्त अचण ते डिठो वेंदो। कौमी असेंबली जे स्पीकर अयाज सादिक चयो आहे त कानून साज़ी बाबति अपोजिशन जो इतिहाद थियण सुठी ॻाल्हि आहे। ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई थकिजी पिया आहियूं, हाणे अपोजिशन अॻिते वधंदी त असां बि वेंदासीं। पीटीआई बानी सां भेण नूरैन न्याज़ीअ जी अडेला जेल में मुलाकात। मुलाकात बाद नूरैन न्याज़ी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करण बिना रवानी। सुप्रीम कोर्ट बि बानीअ जे इलाज बाबति तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त नंबर अलॉट करे छॾियो। दरख़्वास्त जल्द ॿुधणीअ लाइ मुक़ररु करण वारी बि दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, जीए एफएम 88 नेटवर्क। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
10: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
10: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 0331252578 6।
5: जी हा, 2315525786।
10: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखंदा निज़ामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
2: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फील्ड मार्शल आसिम मुनी रजू ईरान जे सियासी ए फौजी क्यादत सां मुलाकातूं आबना हुरमस खोलण ऐं ईरान अमरीका तकरार जे खात्मे ते गौर वीचार। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल जे ईरानी क्यादत सां मुलाकातनि खे नतीजो ॾींदड़ करार ॾेई छॾियो। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में मोहसिन नकवी चयो त ॻाल्हियुनि जो महिवर अमरीका ईरान तकरार ऐं विच ओभर में जारी छिकताणनि जे खात्मे ते हो। इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश नामे जी मुकमल बहाली लाइ घुर्बल क़दम खणण ते गौर कयो वियो। ईरानी सदर मुलाकात दौरान हुकूमती मौक़िफ़ ऐं ख़दशनि खां आगाह कयो। ईरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जे दौरे खे नतीजो ॾींदड़ करार ॾेई छॾियो। मुलाकातनि जा नतीजा बि जल्द साम्हूं अचण जी दावा। ईरानी सदर मसूद पेशकियान जो चवण हो त अमरीका खे ॻाल्हियुनि जी बहाली लाइ पंहिंजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकियुनि ऐं दबाव सां मसला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा। वॉशिंगटन खे इस्लामाबाद में तय थियल मफ़ामत ते अमल करणु घुर्जे। अमरीका खे ईरान सां मुस्बत अगबराई लाइ रवैयो तब्दील करणो पवंदो।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा बेटा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम की खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी फार्मेसी की सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
8: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
10: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 03125252786।
6: जी हा, 231-25-25-786।
10: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन दह साल तो थी डिनी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें उम्र के पोलियो लगी सके तो कें उम्र के वैक्सीन कर सके पर रेशो दह साल के घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
2: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारी की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 03-310-31-43-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकर तवांखे मैदे जी तकलीफ, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगण या बदहज़मी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाक़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: फील्ड मार्शल आसिम मुनी रजू ईरान के सियासी ए फौजी क्यादत से मुलाकातों अबना हुरमस खोलण ए ईरान अमेरिका तकरार के खात्मे ते गौर विचार घरू वजीर मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल के ईरानी क्यादत से मुलाकात के नतीजो डींदड़ करार दे छो समाजी वेबसाइट ते जारी कल बयान में मोहसिन नकवी चयो त गालन जो महवर अमेरिका ईरान तकरार ए विच ओभर में जारी छिकताण के खात्मे ते हो इस्लामाबाद मपामती याददाश्त नामे की मुकम्मल बहाली लाए घुर्बल कदम खड़ण ते गौर कयो पयो ईरानी सदर मुलाकात दौरान हुकूमती मौकफ ए खदशन का आगाह कर मुलाकात दौरान थियल अहम अकबराई मुस्तकबिल में मुस्बत कदम लाए रस्तो खोलींदी ए खिते में जटादार अमन की क्याम लाए मददगार साबित थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे से अहम कामयाबियों हासिल थी। ईरानी हुकूमत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के इंतहाई मुस्बत करार दे छो ईरानी सदर मसूद पशिकियां के आफिस में जारी कल बयान में चयो है फील्ड मार्शल के दौरे जा नतीजा जल्द सामू अचन शुरू थी वा ईरानी सदर चयो त अमरीका के गालन की बहाली लाए पांजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारा आबना हुरमज में बारूदी सुरंगू मुकम्मल तौर से हटाने की दावा बारूदी सुरंगू विछाईंदड़ ईरानी बेड़न के निशानों बढ़ाने की भी धमकी डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान जो मुआशी देवालो निकरी चुको है ईरानी हुकूमत फौज के वे हिस्से के पगार दियण की भी काबिल ना रही है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाक़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125252786।
5: जी हा, 2315-2576।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राति जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सकती है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंधी आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0338 79 0312 34 01 287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जूं ईरान जे सियासी ऐं फौजी क़यादत सां मुलाक़ातूं, अबनह हुर्मुज़ खोलण ऐं ईरान अमरीका तकरार जे ख़ात्मे ते ग़ौर वीचार। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी फील्ड मार्शल जे ईरानी क़यादत सां मुलाक़ातुनि खे नतीजो ॾींदड़ करार ॾेई छॾियो। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में मोहसिन नक़वी चयो त ॻाल्हियुनि जो महिवर अमरीका ईरान तकरार ऐं विच ओभर में जारी छिकताण जे ख़ात्मे ते हो। इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे जी मुकमल बहालीअ लाइ घुर्बल क़दम खणण ते गौर कयो वियो। ईरानी सदर मुलाक़ात दौरान हुकूमती मौक़िफ़ ऐं ख़दशनि खां आगाह कयो। मुलाक़ात दौरान थियल अहम अॻभराई मुस्तक़बिल में वधीक मुस्बत क़दमनि लाइ रस्तो खोले ॾींदी ऐं खिते में जटादार अमन जे क़याम लाइ मददगार साबित थींदी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जे दौरे दौरान अहम कामयाबियूं हासिल थियूं आहिनि। ईरानी हुकूमत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जे दौरे खे इंतिहाई मुस्बत करार ॾेई छॾियो। ईरानी सदर मसूद पशकियान जे ऑफिस मां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त फील्ड मार्शल जे दौरे जा नतीजा जल्द साम्हूं अचणु शुरू थी वेंदा। ईरानी सदर मसूद पशकियान चयो आहे त अमरीका खे ॻाल्हियुनि जी बहालीअ लाइ पंहिंजो रवैयो तब्दील करणो पवंदो। धमकियुनि ऐं दबाउ सां मसला हल थियण बदिरां मुश्किल थी वेंदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां आबनह हुर्मुज़ मां बारूदी सुरंगूं मुकमल तौर ते हटाइण जी दावा। बारूदी सुरंगूं विछाईंदड़ ईरानी ॿेड़ियुनि खे निशानो बणाइण जी बि धमकी ॾेई छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जो मुआशी ॾेवालो निकिरी चुको आहे। ईरानी हुकूमत फ़ौज जी वॾे हिसे खे पघार ॾियण जे बि क़ाबिल नाहे रही।

अमरीका ईरान सां लागापा मुतासिर करण ऐं पाबंदियूं लगाइण जी कोशिश कई त चीन पंहिंजनि हक़नि ऐं मफ़ादनि जी तहफ़ लाइ घुर्बल क़दम खणंदो। चीन अमरीका खे ख़बरदार करे छॾियो। चीनी परडे॒ही वज़ार जे तर्जुमान चयो आहे त बीजिंग गैर क़ानूनी ऐं हिक तरफ़ियुनि पाबंदियुनि खे रद्द करे थो। कतर बि ईरान ते अमरीकी मुआशी पाबंदियुनि खे हिक तरफ़ो करार ॾेई छॾियो। कतरी परडे॒ही तर्जुमान चयो त कतर तकरार जे हल लाइ सफ़ारती कोशिशुनि जी हिमायत कंदो रहंदो। अमरीका पासदारान ऐं इनकलाब जे सीनियर उहिदेदारनि जी ॼाण ॾियण ते $1 करोड़ ताईं इनाम जो ऐलान करे छॾियो। फहिरिस्त में कमांडर अहमद वहीदी, अली अब्दुल हई, हमीद रज़ा जा नाला शामिल। अमरीकी जंग दौरान शहीद थियल सईद आगाचानी ऐं मजीद कादमी जा नाला बि शामिल। ईरानी उहिदेदारनि ते अमरीकी फ़ौजियुनि ऐं हंधनि ते हमलनि जो इल्ज़ाम। अमरीकी सफ़ीर जी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां मुलाकात। खिते जी मजमूई सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। ॿितरफ़नि लाॻापन सहकार खे बहितरी ॾियण ते गौर कयो वियो। अमरीकी सफ़ीर खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ फील्ड मार्शल जे मुस्बत किरदार जी वाखाण कई। धरती माउ आहे। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारीअ जो समाजी वेबसाइट ते बयान। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंधीअ में लिखियल जुमिलो बेनज़ीर भुट्टो जी तस्वीर सां गॾु शेयर कयो।

0: आपके खिलाफ भी कोई अदमियत माल लाई जा सकती है अपोजिशन की तरफ से।
1: देखिए ये हक होता है अपोजिशन का कि वो अदम एतमाद लाएं स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ये उनका एक सियासी जमहूरी हक है। तो अगर वो लाना चाहेंगे तो फैसिलिटेट हम करेंगे, हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप नहीं ला सकते, मैं नहीं लाने दूंगा, ये उनका हक है। तो वो जब आएगा वक्त तो तब देखेंगे।
2: बेतमादी रिथ आणण अपोजिशन जो हक है, रोके नथो सघजे, वक्त अचण ते ॾिठो वेंदो। कौमी असेंबली जे स्पीकर सरदार अयाज सादिक चयो आहे त कानून साज़ी बाबति अपोजिशन जो इतिहाद थियण सुठी ॻाल्हि आहे। ॻाल्हियुनि जी दावत ॾेई थकिजी पिया आहियूं, हाणे अपोजिशन अॻिते वधंदी त असां बि वधंदासीं। पीटीआई बानीअ सां भेण नूरीन नियाज़ीअ जी अडाला जेल में मुलाकात। मुलाकात बाद नूरीन नियाज़ी मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करण बिना रवानी। सुप्रीम कोर्ट बि बानी जे इलाज बाबति तोहीन अदालत जी दरख़्वास्त ते नंबर अलाट करे छॾियो। दरख़्वास्त जल्द ॿुधणीअ लाइ मुक़ररु करण वारी बि दरख़्वास्त दाख़िल कराई वई। सेनेट में पीटीआई बानीअ जी इलाज बाबति अपोजिशन जो एहतजाज। मेंबर सीटनि ते बीही रहिया, बानीअ खे इलाज लाइ इस्पताल मुंतकिल करण जो मुतालबो। सिहत वारे वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त डॉक्टरनि पीटीआई बानीअ जो सीटी स्कैन कराइण लाइ चयो ई नाहे त कीअं थींदो। पिम्स इस्पताल में हिकु न पर ॿ मशीनूं ऑपरेशनल आहिनि, सबूत पेश करे सघूं था। राणा सनाउला जो चवणो हो त हाणे अवां पीटीआई बानीअ खे बीमार साबित करण ते छो ज़िद करे रहिया आहियो। अदालत न बणिजो, असां पंहिंजो उज़ुर अदालत में पेश कंदासीं। फैसलो अदालत खे ई करणो आहे। अलामा राजा नासिर अब्बास चयो त हिन मामले में हुकूमत वॾी दिल जो मुज़ाहिरो न कयो। यकीन था ॾेरायूं त हुकूमत केराइण जो सबब न बणजंदासीं। ख़दशा ख़तम कयो। पीपुल्स पार्टीअ जी वफ़द जी क़ौमी असेंबली जे स्पीकर चैम्बर आमन वफ़ाक़ी वज़ीरनि सां मुलाकात। पीपुल्स पार्टी जी वफ़द में फारूक एच नाइक, शेरी रहमान, राजा परवेज़ अशरफ ऐं मुर्तज़ा वहाब शामिल। वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउला ऐं कानून वारो वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ बि मौजूद हुआ। पीपुल्स पार्टी जे ख़दशनि ते ग़ौर वीचार। शेरी रहमान चयो आहे त रुगो कोरम पूरो करण नाहियूं आया, हुकूमत सां कुझु मामलनि ते इख़्तिलाफ़ आहिनि जेके लिकियल नाहिनि, मसला हल थियणु घुर्जनि। सिंध जे घरू खाते कराची जे नौजवान।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
5: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
9: खुशखबरी पैंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन के सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अजा मुस्तफा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियों जो इलाज ऐं बार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाने रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलन जी मोबाइल नंबर 2301143842।
10: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
11: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
10: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
10: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
11: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
10: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
11: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
6: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
8: जी हा, 2315525786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
0: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचण, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
2: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
6: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई

0: इलाज नहीं, इससे बचाव सिर्फ पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।